0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ पाप के आशाओं को

사탕 초콜라 소 아즈카로 갈발레이저로 어디디게 예볼 앞가르젤라에 예 가노메 고즈나자이 तो लगा

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: Estilike progrense. Bharat mein achhi faili. Isliye baap dada seva ke nimit aap sabhi ko emerge karte. जगाएंगे, जगा रही है और आगे भी ऐसे वीआईपी तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे, उनका अनुभव भारत वालों को जगाएंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Come on.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बक इसको बलि चढ़ाती है, बकरी को। बकरी को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी की।

0: महीन में बन यही बाप कहते हैं। आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Oh.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, तब अपना बनाए। Suck.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वयं को और Auswirkungen.

0: वर्तनी आत्मा बन जाते, रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराती है। और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bill.

起。什么卡卡萨呢？卡比比，费拉特纳杰，一时间比费拉特哥。Asco.

Carioca, aber gesoffen.

सफलता का प्रलोभन

सफलता का फल प्राप्त होगा। अब किस समय का सफलता की प्रारंभ पूरा समय सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहते, बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाए, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त। ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसका फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझ।

Shit.

0: इस समय के सफलता का प्रलाप स्वतः ही प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्व प्रत कितना सफल किया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

और

frío. No.

Freddy. सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

see you well.

Let's see.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लक्षण विशेष

दूसरा

इससे है तो और बातों में नष्ट।

योग संगम युग पर विशेष पाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध

Legend Boutique.

संतुष्ट रहने में इसी।

Исцелима.

0: शरद का समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे सोचते हैं

0: 想希望和弟弟弟我不妈妈不妈妈的没给他的Lekin Bab Keti Jesse Sakar Rope me Sada bachon ke saath rahe Aise Vatan mein bhi rehte bachon ke saath hi rehte akele nahi rehte bachon ke bina baap ko bhi maza nahi aata जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे समान बना के साथ 人が目なわけ。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। कौनो सभी सहज पुरुषार्थी बोलो। Yes.

never sit alone. Sicken me. Cha-cha. Exercise, girl.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपने अपने वर्ग के अच्छे अच्छे अनुभवी उनके अनुभवों का किताब छपे छपे वो हाथ उठाओ, कोई ने नहीं।
3: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है।
2: यूथ
3: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
3: सभी का भी छप रहा है कहते हैं। जिला जुला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी फ्री होके पढ़े और हर वर्ग का पढ़ने से प्रभाव पड़ता है। कई समझते हैं कि कर्म करते हुए ड्यूटी संभालते हुए कुछ हो नहीं सकता है तो लोगों को उमंग उत्साह आवे, तो जब ये बने हैं तो हम भी बन सकते। तो ऐसा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में आ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ, आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य
0: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद आपकी और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

eccolo. Mary. Freddy. Tristy. Gritty. Is

0: सुख लेना दुख नहीं लेना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो, जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ये सखियां थक गई पंथ निहार, आ जा रे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय।

सामने आने से

से बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक। ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहिए। आत्माओं के कारणों को भी निवारण

अभी मुक्ति चाहते। तो शांति से सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते। और मुक्ति दाता कौन? पाप के साथ आप बच्चे

Čerče trusy. Ač tak. Kjabán.

brillante. Por te. Dec. So.

기억에 칠하대요.

Shut up.

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सके। Sit.

fuck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Joker.

さ

Super Podcast.

خوشی.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर, परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्मा विल पावर की आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच के बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं चुके।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पुरुषोत्तम संगम योगी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा, जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आते हैं, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है, मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ, उन्हों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते, माया भी सुन रही है, तो ये जीत बनेंगे।

0: आप याद करो, मेरा काम भगाना है, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना? स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को आर्डर कर सकते हो, कर सकते।
2: I'm sorry.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके, और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान उदय में रखा, उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया, क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती, लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का सा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक गलती बहुत करते हो, इसके कारण भी संस्कृत समझती है, कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया फिटिंग कर लेंगे। ये समझती है तो हाँ ये तो कर। तो बोल क्या करते हो, किसी से भी जब बड़े या छोटे एक मेरा संस्करण का वो मेरा है मेरा है किसका है ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार कहते हो मेरे संस्कार तो ये मेरा शब्द ये ही सोना संभाल के या हीरा

0: dich bei dir. Mira Sanskar.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का समझती है।

सोचते हैं।

थे, मुक्ति का वर्षा दिल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी जैसे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये पक्का हो गया, पक्का है ना? चलते फिरते क्या सोचते हैं हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा आत्मा ऐसे। अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तनम में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए। वाह, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कार्य पूरा हुआ और अपन ने स्वरूप में देखो आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देंगे। आपकी दृष्टि दूसरे को भी भर पाओगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कुछ ना कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभाश है कि हर एक बच्चा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को भ्रमण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी, सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी, किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले सुना देते हैं। अलबेले कभी नहीं बनना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो, जितने चाहिए जैसे चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने रिजल्ट देखी सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे है किसमें मेरी कोई नुकसान है, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और बाप को भी क्या याद रहे।

हर गरम करते याद रहते।

देखो शेखर, काम काज करते भी याद किसकी है, कॉपी किसको करते हैं, साकार में क्या दिखाई देता है बाप के दिल से कहते काम काज करते भूल जाते हैं, लेकिन यहां भूलने का ना

0: और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। ये संबंध संगम युग की सौगात।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे कर दे, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद कर दे। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाप

0: नहीं करो मत दे बाप और फिरे मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं वाह मेरे बच्चे लाडले वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव सरापी आगे करेंगे तो पाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Scheiße.

जैसे और गर्व इंजीनियर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Awesome.

Cosa

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। वो कमजोरी जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी। दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद है। हाथ उठाओ।

0: जब भावना से टोकरे के रूप से नहीं पूछना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Stay.

Que pá!

चल रही है, चल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अमृत वेले बाप दादा चक्कर सभी तरफ लगाते, वोट के लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Come on. समझ तो है, एक सेकंड में विदेह बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना जैसे न्याना हो गया, संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ, और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय बने। अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेंगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सके। अभी क्या है,
3: baby।

0: मनोबल की बड़ी महिमा है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी बच्चों

सदा खुश रहने

और बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही

बोल सकते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए अच्छे। बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय पर मान कोर्स के बजाय फोर्स का कोर्स करो। ऐसा फोर्स का कोर्स कराओ जो वो आत्माएं बाप के सिर्फ सनेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली फोर्स, सर्व फोर्स पढ़ने वाली आत्मा बने, समीप का रतन बने। ये हो सकता है अभी फोर्स का कोर्स करें।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Some

Bobo Show.

Bart.

सर्वा

0: परम परिवर्तन की जिम्मेवारी का पांच तारीख आत्माएं बनो जिम्मेवार होना बाप के साथ मदद
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति, अभी ज्यादा चाहिए सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति, रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती, जब करना ही
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा

इंसाने जमा करना, ये एक कत है। दूसरा

Stop.

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य के

जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बन सकते हैं।

api.

Schlüssel. Sadai. Karte chalo.

व्यापार संसार है। दूसरा न कोई, इससे एकाग्र सिमट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा ताना पाना ताना दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिया, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिया तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, बाप जैसे डायरेक्शन।
2: Yeah.
1: वचन दें।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने देंगे, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा आपके हाथ में, और देखा जाता है it

Bonnie.

Gottchen, nach Mädchen. Gottchen, Mädchen. Kapier.

Queen.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

see.

सब कट्टे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। दरवाजा खोलने के लिए सभी कट्टे हाजिर हो जाएंगे। डेट मांग रहे थे।

Choco. Be hot.

ya bien. Que tú

0: चलते फिरते दे अब माने बनना यही बेहद का फेरा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि को लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। साखी बनो और सदा अपने कोई भी हाल चलो उस समय अनुसार।

0: pipí. A tarde y banana. Sus carolegen. Satan no que a dar par. Apre chivan con Ivano. Sainz que Satan. Kabibi. Shoes nahin kar sakenge. Isliye silence ka sadhan. Jahan bhi honge. Jaisi bhi pristhiti hogi. स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएंगे, लेकिन अपने पति की लाइन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये तो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी

0: मन को ऐसे जलाओ जैसे पांव और बांह को जलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो, आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्धपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे देखेंगे, ये के नहीं चले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की प्रणाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया पाप?
2: Wow।
1: में स्पष्टता होती है। बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात छोड़ो, सिर्फ बोल में भी किस में मिठास होता है, किस में स्पष्टता होती है, किस में कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है। तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन आवे फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए। नाम हो गया दी सेंटर की इंचार्ज, और तीस में से ठीक है तो क्या हुआ, फायदा क्या? सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के तीस सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम कर, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Just

Tiamat's

Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

होना अर्थात दीवार पुरुषार्थ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
3: जी।

خوشی.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bye.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Push.

0: संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना मैंने तो दिल कुछ मिठाई खिलाई, लेकिन ये तो नाराज हो गया। कोई अर्चा नहीं, वो राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज हो गया। आप तो राज को जानते हो ना, तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब वाह समस्या के वश आप आज्ञाकारी बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई?

0: 実家のゲーボールチャンジェラサタランカリミピYada or biada Anda bakar teo Koi bisa me Achanak Koi biat maap ke samne aje 받을때 제시 바드 베시에프나 수르브네이바나오 바타브고 기운받을리 아바바드고 받을로 볼 परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको जैसा समय जैसा सरकमस्टेंस वैसे स्वरूप बने ये तो साधारण लोगों का भी होता है लेकिन फरिश्ता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा तो करी लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Doch.

सबसे सहज साधन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली, सभी बात

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान

0: टेस्ट को खत्म कर, पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट
1: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर Yes, sir.

Sheesh.

0: चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

приятно.

अमृत लेके, अमृत वेले से लेके

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन दीवार पुरुषार्थ की लहर को भी

0: शरद हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरद में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं शरद पे तीवर रहने वाले औरों को भी शरद पे आगे बढ़ाओ, वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले, पढ़ाते भी चले, क्योंकि एक दो के साथी होना तो सबके प्रति बढ़ाते चलो, उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा से

होती फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। लेकिन जो सेवा आपको हलचल मिलाए, मानो चांस नहीं मिला है सेवा, और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो वो सेवा क्या, उस सेवा का सभी के दुआओं से सेवा, उसका पार्थक्य फल खुशी होगी। और अगर सेवा में

महान स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे ये सब भाव स्वार्थी सेवा के लिए। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा

आपका ऐसी सेवा धरी जो स्वार्थ भाव नहीं हो। मुझे चांस मिले, मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाए। ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामिक रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आपके हो। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं। चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते। ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सुख्या

Hast du alles?

0: भी आपका शेयर जमाऊं, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो। ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है? हो गया दिन पूरा, बहुत सोचो हमेशा हिसाब किताब। चोपड़ा, आपको कुछ करना नहीं पड़ता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल लेते। और बाप दादा एक एक को देख अटेंशन बातें

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा

Apa?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

sucesso.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने आजकल

Wyszyńcie.

Meet Tommy.

मीठी वृद्धि, मीठी दृष्टि।

0: वतन।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप दादा से

0: का कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा कहीं नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, ये वर्णन करे कि आज मुझे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेकिन परसेंटेज में अंतर बढ़ जाता।

Peace.

Kacatua orang.

खजाने के मालिक richest in the world अकुट और अखंड खजाने जितने देंगे उतने बढ़ते जाते कब नहीं होंगे बढ़ेंगे।

no quiero paz. Yeah.

Sonaí de Tiena.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

इस समय पर जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते, ब्रह्मांड आत्माओं ने

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते, अभी अभी देखना चाहते कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजद कारी के सीट पर सेट

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चे जो भी समा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सादा

0: Francesca, mera body conscious ke seva kabhi ऐसे चेहरे होंगे। तब भी फोटो निकाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

silenzio. Sé que te va a piar esa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सफलता

सफलता की बात को भी सफल

सफल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है ना? कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपकी संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में करो तो एवरिटी, चलो 6 मास में नहीं तो 1 वर्ष तो है। हलचल में हिलना नहीं, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण और रुकावट बन के सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, ये होगा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस
2: डायरेक्ट दाता से लो।

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। Baby.

हर एक बच्चा

सेवा में बिजी

0: कहानियों का अनुभव कभी भूलता नहीं है, सुना हुआ भूल जाता है। अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाए। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना फर्से का अधिकारी नहीं बन सकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: Sekarang rongga tuk ar apa kusimi naisteri si kulkendia merwa mahot malukas
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है। तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते। और बाप उन बच्चों को देख सुखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

ट्रिकल नहीं, लेकिन फकोड़ जाना।

एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्म।

0: जीवन कितने खुशनुमा बन जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता सकते, प्यार ही आपके समय

अवतार भी जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो पाप फ्रेंड बन के बहलाते, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो पाप पूछने के लिए भी आते। और आपके आंसू दिल के डब्बी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट होके रोज भी जाते हो, रोस्ते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन पाप रोसे हुए को भी मनाते आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो वक्त भी थोड़ा कम हो जाता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: व्यक्ति बिक जाए मट्टी मट्टी मट्टी में मिल जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई कौन से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, समय नहीं है, देखने का ये कौन बहुत अच्छा, तो कौन का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। यहाँ कहते हैं किसमें सेवा की विशेषता हो, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा सने शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भीज जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी आकर्षण है व्यक्ति के, क्यों सेवा की विशेषता का दाता कौन, वो व्यक्ति या बाप देता है, कौन देता है, जो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, कौन को देखते, सेवा को देखते, तो दाता को नहीं बोलो, लेवता, वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का कौन या विशेषता आ सकती है, आती है कि अज्ञान से ले आता है वो विशेषता, अज्ञान में होती है क्या, ईश्वरी

Fire.

assim. Yep.

fish.

0: společný sad nám jeden nevadí. Hotelový.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

कोशिश का कंट्रोल हो जाते हैं, खड़ी हो जाती है, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी।

起来。

Stop, oye.

Just

some Joe.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक तो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। ऐसे जब भी कोई समस्या आई तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकते है, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो। हर शक्ति को समय पर आर्डर करो, वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मास्टर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोच

remorse. What is this? Sanskar.

si tatapan. Abi, imar cicai, mana me bavna tohe. Jalan.

0: सभी आत्माओं की पुकार Divya, Divya. परिवर्तन करो। अभी अपना इष्ट देव देविया दत्तापन का रूप इमर्ज करो। देना है कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उलैनों की मालें पड़ेगी। उलैने तो देखे ना, तो उलैनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो पूछे हो ना। ऐसे नहीं समझना, हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े है वो ही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।